0: ओ मारे खाना प्रलो सही हतार नहीं ना हो या जो
1: मेवाने बच्चे जी तारे मुई पीवा मेवा मी मार्वलरी प्रिवा बीरा देसी सर मोबा गंगा आर्ट गैलरी भी या वो मेवा आचो
2: मैं याम बीरा तैयार तड़ी बा तारे नासर बाजार लंबी मु मेरा बा कप ट्रॉफी प्रमाण पत्र बैनर को बनेल पर्दी बीरा या वो महिलो खारे तारे प्रे याना से जी
1: सर गंगा आर्ट गैलरी भी तो बने बा आचो
2: तर मी मार्बलर फ्रीवा साइन बोर्ड होर्डिंग बोर्ड लाइट बोर्ड जम्मै बनिम्रो फोटो प्रिन्ट टी शर्ट प्रिन्ट स्टिकर कटिम लम्रो छाल असी ब्याज दे माया चिनो भनेम्रो
1: पहिले भनेको मैले सबै बुझ्यो कान्छा गंगा आर्टमा के पाइन्छ भनेर एकपटक पहिले सबै भन्देऊ त नेपाली भाषामा
2: मेडा भा कप ट्रफी प्रमाण पत्र ब्यानर को बनेल पर्दी भिर या मैले खारे तारे प्रे यान सेदी
1: सर गंगा आर्ट गैलरी तो बने आचो।